सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: है।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
1: कूल सॉन्ग।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो चुके हैं। यहां पे हम आ चुके हैं आपके साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से खबरें कहानियां शेयर करने के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। तो भाई अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर अपने गुड मॉर्निंग कोड्स भेजिए, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजिए। उसके साथ साथ मुझे बताइए भाई वीकेंड आ रहा है तो क्या क्या प्लान्स हैं। देखिए वीकेंड के लिए कौन दीवाना नहीं होता, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं हम, है ना। इसलिए हम थोड़े क्यूट गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे।
1: सुनिए आप इस धूप में कितनी अच्छी लगती है।
0: और उसके साथ साथ शो की शुरुआत करने के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया पेपी सा गाना लेंगे मोहित चौहान की आवाज में।
2: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ है।
0: तो जैसे मैंने बोला भाई अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे आपके हाल के बारे में, आज के इरादों के बारे में, साथ ही साथ वीकेंड में क्या क्या करने का प्लान है, उन सब के बारे में। यहाँ पे हम गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, this is Benny Dayal here.
4: Benny Dayal here.
3: Olive Radio 106.3.
4: Jiyo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm a number one.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
8: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
9: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: इतना प्यार है यार इस गाने में, इतने नजाकत के साथ इस गाने को गाया है, सुन के मजा आ जाता है। मगर जिंदगी में प्यार भी ना होना तो मन करता है कि यार काश कोई होता और उसको ये गाना सुना पाता मैं। फिलहाल यहाँ पे हम काम की बात करते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:19 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आए हैं थोड़े मैसेजेस। सभ्य साची भाई का मैसेज आया है, लिखा है, हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, प्लीज डोंट कॉल मी सर सर बिकॉज आई फील आई एम ओल्ड पर्सन सर। नहीं नहीं नहीं, मैं एक तो मुझे एज से भी बहुत बड़ा महसूस होने लग जाता है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल बिल्कुल भाई आपका ही भाई हूँ यार। ऐसे आप सर सर बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। संधु जी का मैसेज आया है, बोला है, गुड मॉर्निंग जी, मे यू हैव अ वंडरफुल डे, हरपाल संधु फ्रॉम दुकान। थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और उसके साथ साथ मेरुनिसा जी का मैसेज आया है, लिखा है, गुड मॉर्निंग सुदेव करके, गुड मॉर्निंग मेरुनिसा जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया है, की हाल है बताइए जरा मुझे। और ऋषीन का मैसेज आया है, ऋषीन ने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, डोंट कैरी वॉट यू डोंट नीड इन योर पॉकेट, इन योर होम, इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट, गुड मॉर्निंग करके। बिल्कुल सही बात है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर रखने की जरूरत क्यों है, है ना। और उसके साथ साथ मुझे अबरार भाई का भी एक मैसेज आया है, बहुत ही प्यारा सा उन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा है मुझे, और थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफी बढ़िया और प्यारा दिन मैं विश करता हूँ। अस्मा का मैसेज आया है, अस्मा ने कोट भेजा है, लिखा है कि If you are looking for true life change, if you are looking for help in making the big and little decisions of life, if you are looking for clarity in the midst of doubt, there is no better place to start your day than in God's word. बिल्कुल सही बात कही है, इबादत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सजदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सब करेंगे तब हमें एक मेंटल पीस मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक चैन आता है कि चलो यार कोई है हमारे साथ, वो एक फेथ हमें जो है आगे बढ़ने के लिए जो है एनर्जी देता है। और उसके साथ साथ जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जुल्फी भाई ने भी एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, गुड मॉर्निंग, फोर ब्यूटिफुल थॉट्स ऑफ लाइफ, लुक बैक एंड गेट एक्सपीरियंस, लुक फॉरवर्ड एंड सी होप, लुक अराउंड एंड फाइंड रियलिटी, लुक विद इन एंड फाइंड योर सेल्फ। बहुत ही बढ़िया बात कही यहाँ पे, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया बात, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और मुझे मोहम्मद असलम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी लिखा हैप्पी थर्सडे, गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है और इसमें एक फोटो भेजा उन्होंने जिसमें लिखा है, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू पेज इन योर स्टोरी, मेक इट ब्यूटिफुल, मेक इट काउंट, Have a wonderful day. Good morning करके। Thank you so much, thank you so much। आपको भी काफी बढ़िया और wonderful morning मैं विश करता हूँ। नाजनी जी का मैसेज आया है और नाजनी जी ने लिखा है, Good morning, wishing you a bright, energetic and beautifully productive day ahead करके। Thank you so much जी, आपको भी काफी बढ़िया, प्यारा, cute और बिंदास दिन मैं भी विश करता हूँ। और यहाँ पे यही मैसेजेस पढ़ते हुए जरा हम आगे बढ़ते हैं। और जानिए अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो इंतजार किस बात का है, मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर, अपने गुड मॉर्निंग कोड्स भेजिए, मैसेजेस भेजिए, बताइए आज क्या क्या करने का इरादा है। और थोड़ी ही देर में जब गानों के उस पार हम वापस आएंगे, एक सवाल लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए मेरे सवाल के लिए। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: हाँ मैंने भी प्यार किया मूवी का गाना सुना हमने अलका जी और उदित जी की आवाज में सर सर सर सर सर सर सर सर सर। मुझे इस गाने की लिरिक्स स्पेशली जो मेन लाइंस है ना कि हम प्यार है तुम्हारे, अगर कोई शिकायत हो कुछ भी हो शिकवा हो हमसे मिला करो हमसे गिला करो करके क्या क्या क्या स्पेस देते हैं यार। मतलब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो कुछ भी प्रॉब्लम हो बताओ यार, प्यार है हम तुम्हारे, तुम हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, यही रीअश्योरेंस ही तो चाहिए जिंदगी में। ऐसा रीअश्योरेंस अगर लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें मिल जाता तो भाई इंसान खुद ब खुद सक्सेसफुल हो जाता। मगर क्या करे, ये संसार का उसूल थोड़ा अलग है, कुछ ना कुछ चीजों में लोचा रहता ही है, बट कोई बात नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे सवाल पूछने के लिए मैं तैयार होके पहुंच चुका हूँ ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: और ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में सवाल मेरा तैयार है, थोड़ा ज्योग्राफिकल सवाल है। सवाल का जवाब देने के लिए आपको यूरोप और एशिया के बीच में जाना पड़ेगा। जी हाँ यूरोप और एशिया को एक ज्योग्राफिकल माउंटेन रेंज जो है डिवाइड करता है, ठीक है, एक बाउंड्री बन जाता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में बन जाती है। उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है जिसके कारण एशिया और यूरोप के बीच में एक ज्योग्राफिक बाउंड्री बन जाती है, आपको उसका नाम बताना है। मैं एक और क्लू दे देता हूं आपको, यू से उसका नाम शुरू होता है। अब बताइए तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी मेरे सवाल का जवाब क्या है करके। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर और बता सकते हैं कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। सवाल मैं फिर से पूछ लेता हूं, व्हाट स्पेसिफिक माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल ज्योग्राफिक बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया करके। और यहां पे एक और मैसेज मेरे पास आया है, साजिद भाई ने मुझे मैसेज भेजा है, लिखा है गुड मॉर्निंग, I didn't text to any RJ or any station till now, so I don't know what I should write. But ha, I am enjoying the radio all events. Say my salam to Simran Kaur, stay blessed Sudev. Thank you so much, Chaudhary Sajid from Pakistan. Thank you so much. और आपको भी काफी बढ़िया दिन में विश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपका दिन जो है काफी अच्छा जाए, वीकेंड भी एकदम मस्त जाए। बहुत बहुत अच्छा आपने मुझे फील करवाया इसे एक मैसेज से, बहुत खुशी हुई मुझे। और इसी खुशी में चलिए एक गाना प्ले करते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में, एक्शन रीप्ले मूवी का। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 6:52 हो रहे हैं और मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, तो जरा एक एक करके हम मैसेजेस भी जरा सुन लेते हैं, देखते हैं कि लोगों ने क्या जवाब दिया है मेरे सवाल का.
1: गुड मॉर्निंग सुदेव जी, कैसे हो आप? आपका जो आंसर है यूरोप एंड एशिया के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है यूराल. एंड जब हम लोग छोटे थे और इस क्वेश्चन जब याद नहीं होता था क्योंकि डिफरेंट नेम लग रहा था यूराल, तो इसको ऐसे याद कराया था टीचर ने कि यू से यूरोप एंड ए जो आता है बीच में उससे एशिया ऐसे बोलना है और याद रखना है. बस आज तक याद है. चलो जी, थैंक यू. आई थिंक ठीक ही है, मतलब आंसर ठीक है. वैसे गूगल से मैं चेक फिर से करती हूँ. थैंक यू सो मच.
0: एंड सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला है सरता जी, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच. सृष्टि का मैसेज भी आया, वो भी सुन लेते हैं.
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज सृष्टि हियर एंड द आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन इज यूराल माउंटेन्स.
0: थैंक यू सो मच सृष्टि. मुझे ध्रुव भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने भेजा है गुड मॉर्निंग दिस इज ध्रुव एंड द आंसर टू टुडेस क्वेश्चन इज यूराल माउंटेन्स. उसके साथ साथ मुझे अहमद भाई ने भी यूराल माउंटेन्स मैसेज भेजा है, अंजू थॉमस ने भी यही आंसर भेजा है, और उसके साथ साथ मुझे और एक मैसेज आया था राजीव मोदी जी का. सो कल मैं और तनिषा शाम को शो कर रहे थे और हम कुछ मतलब शो करते वक्त जो है मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच था, कोई भी मैसेजेस जो है हमें दिख नहीं रहे थे और थोड़ा इशू था. तो सारे मैसेजेस जो आज सुबह आके मैं ऐसे देख रहा था, रिस्पॉन्स कर दे रहा था उन सबका, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था गाना प्ले करोगे, मेरा गाना प्ले कर दो करके, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया. राजीव जी, आई होप यू आर हैप्पी और आपका दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए. उसके साथ साथ आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो बजेंगी तालियां यहां पे. चलो इसी खुशी में काम करते हैं, एक साथ बैठकर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, ये है बिंदास मॉर्निंग्स। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और स्टेशन क्लॉक में अभी 7:07 हो रहे हैं। और चलिए जरा तापमान का हाल चेक कर लेते हैं, मौसम क्या मौसमिंग कर रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। और अभी के हिसाब से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अभी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। आज का लोएस्ट टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। और अभी इस वक्त हवा जो है 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और यहाँ पे भाई मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। ना मुन्ना ना, ये हवा तुम्हें कहीं उड़ा के नहीं ले जाएगी। मगर जिस तरीके से हवा का बहाव है, मेरे मन में एक गाना भी आ रहा है ऐसे। I couldn't resist myself from doing this, यार मजा आ गया करके। अभी फिलहाल देखिए यही है टेम्परेचर का हाल। आप बताइए बाहर आपके लिए कैसा है, कैसा माहौल है। कुछ अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं तो जरूर फोटो खींच के भेजिए मुझे 3311063 पर, हम भी जरा नज़ारे देखें। स्टूडियो के चार दीवारों को देखकर मन थोड़ा बैठ सा गया है, तो मेरे मन को थोड़ा और खुश करने के लिए फोटोज भेज दीजिए तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी। और यहाँ पे गाना प्ले करते हैं मातृभूमि मूवी का।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi guys, this is Abar Shetty Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
1: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 7:20 हो रहे हैं और मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। मुझे जो है दूरेश आवर जी ने मैसेज किया है और उन्होंने बोला है ट्रैफिक जैम है भाई इस गर्मी में। भाई किस एरिया में ट्रैफिक जैम है जरा मुझे बताइए, और दिख रही है मुझे गाड़ियां तो हैं बहुत सारी, तो एरिया कौन सा है जरा प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं नोटिफाई कर पाऊँ लोगों को, बता पाऊँ लोगों को। और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप थोड़ा और बैठ के हमें सुन सकते हैं, ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाएंगे मगर कोई नहीं भाई, आज तो वीकेंड है, चलता है आज थोड़ा ढीला हो सकते हैं ना, आज के लिए ये वारंटेड है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आया है। हाँ जी हाँ, उन्होंने मैसेज किया, मुझे बोला दोहा मॉल के पास का एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन है, तो इन केस जो लोग मुझे सुन रहे हैं उस एरिया से ट्रैवल करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि रीरूट करें, कोई और रास्ता जो है आप कोशिश करें अपनाने का। अभी जो है थोड़ा ट्रैफिक में वहाँ पे फंसा हुआ है और देखते हैं जल्दी जल्दी सॉर्ट हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। और उसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई थोड़ी देर में जब हम आएंगे तो फिटनेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: थैंक यू ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे मैं बस सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ही दिल उठा के मत दिया करो किसी को, देखो कि आगे जो है बंदा वो दिल लेने लायक है कि नहीं। हम तो हैं मगर हर कोई ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM बिंदास मॉर्निंग में, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:35 हो रहे हैं और यहाँ पे फिट है तो हिट है में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने का वक्त आ चुका है।
1: फिट है तो हिट है,
0: और यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया बात हम बताना चाहेंगे। देखिए यूजुअली जब भी हम फूड की बात करते हैं, कैलोरी के बारे में बात करते हैं, मगर क्या हर कैलोरी हमारे बॉडी पे एक जैसा इफेक्ट करता है क्या? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हर कैलोरी जो है हमारे बॉडी पे एक ही जैसा इफेक्ट करता है, मगर ऐसा नहीं है। एक कैलोरी टेक्निकली एनर्जी की यूनिट है, लेकिन बॉडी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग अमाउंट की एनर्जी यूज करती है। इस कॉन्सेप्ट को थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गया ना, थोड़ा सिंपल बता देते हैं, सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोटीन डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट एनर्जी कॉस्ट लगाती है, और फैट सबसे कम एनर्जी लेती है। एग्जाम्पल, अगर आप 100 कैलोरी प्रोटीन लेते हो, मतलब 100 कैलोरी प्रोटीन से लेते हो, तो उसमें लगभग 20 से 30 कैलोरी डाइजेशन प्रोसेस में ही यूज हो सकती है, जबकि 100 कैलोरी फैट से लेने पे बॉडी बहुत कम कैलोरीज डाइजेशन में खर्च करती है। इसी वजह से प्रोटीन रिच मील्स ज्यादा फिलिंग फील होते हैं, मसल मेंटेनेंस सपोर्ट करते हैं, कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना प्रोटीन रिच मील में इजियर हो जाता है। लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना भी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकता है, तो मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना होना चाहिए ये आप या तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर एक डॉक्टर से बात करके जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू वो आप फिगर आउट कीजिए और उसके हिसाब से प्रोटीन इनटेक जो है रखिए अपना। और इसका ये मतलब नहीं है कि कैलोरीज मैटर नहीं करती, वेट मैनेजमेंट में टोटल कैलोरी इनटेक अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बस हर कैलोरी का मेटाबॉलिक इंपैक्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, रेखा भारद्वाज और मोहित चौहान की आवाज में सुनते हैं मथुरू की बिजली का मंडोला, मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना है, क्यूट गाना है। इस गाने को एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कुछ नए नए चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिसमें आया है नया मेट्रोलॉजी लॉ। और कैबिनेट ने शूरा काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड एक नया मेट्रोलॉजी लॉ जो है उसको नोट किया है। इसका मेन एम क्या है? मेजर स्टैंडर्ड्स को मॉडर्नाइज करना, जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाना, फेयर कंपटीशन मार्केट में इंश्योर करना, और नेशनल लोकल कंटेंट स्ट्रैटेजी भी अप्रूव हो गई है। कैबिनेट ने नेशनल लोकल कंटेंट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी को मंजूरी दी है। इसका गोल क्या है? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में लोकल कंटेंट को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना, लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सपोर्ट करना। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा गाना जो है आपके लिए हम प्ले करना चाहेंगे, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक है ये, और एक टाइम पे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, स्पेशली इसका ये वाला पोर्शन जो है लोगों के दिल में अभी भी बसा है। बिल्कुल भाई, अभी गाऊं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
5: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
6: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
5: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
6: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
5: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ऐ दिल है मुश्किल का एक काफी कल्ट गाना। आप सभी का विजय और बार स्वागत है, आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि भाई अगर आज के दिन आप कुछ हैंग आउट करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने आप खुद अपने आप चाहते हो कि मैं टाइम स्पेंड करूँ अपने साथ तो क्या क्या कर सकता हूँ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। आप जा सकते हैं 22nd प्रोजेक्ट कतार के लिए और यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक प्रेजेंस जो है मतलब इंडियन बिजनेस का भी है वहाँ पे, आप ज़रूर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और दोहा एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जो है ये हो रहा है, आज लास्ट डेट है, रात 9 तक जो है ये आप प्रोजेक्ट कतर जाके विजिट कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा एंड इट्स फ्री, यू कैन रजिस्टर, आप जा सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी और सारी चीज़ें होने वाली हैं जैसे कि कतर आउटलेट एग्जीबिशन जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजे थे उसके बारे में, फ़ोटोज़ भी भेजे थे। और उसके साथ साथ भाई मैच होगा कतर का 13 को जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और आज भी जो है फीफा वर्ल्ड कप का मैच है, रात 10 किक ऑफ होने वाला है, मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। उससे रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल कहानी है मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे काम करते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई, हम सब जानते हैं कि आज जो है फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। पहला मैच है मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, और इस मैच में ना एक स्पेशलिटी है, क्योंकि इससे पहले जब मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था 40 साल पहले 1986 में, तो बेल्जियम ने मेक्सिको के साथ गेम खेला था, ठीक है। और 40 साल बाद बेल्जियम के एक प्लेयर फिर से मेक्सिको में आ रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बट नॉट एज ए प्लेयर बट एज ए कोच। बात कर रहा हूँ ह्यूगो ब्रूस की, जो उस टाइम पे 1986 में बेल्जियम के प्लेयर थे, और 40 साल के बाद जब वापस वो जा रहे हैं मेक्सिको में मेक्सिको के खिलाफ खेलने के लिए, तो इस टाइम वो एक कोच हैं। इन 40 साल में कितना कुछ बदल गया है ना। और 1986 का वर्ल्ड कप बहुत स्पेशल भी था, क्योंकि अर्जेंटीना ने जो है अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था। डियोगो मैराडोना का जो एक मैजिक था वो लोगों ने देखा था, क्या प्लेयर थे। अभी रिसेंटली मैं कुछ बेस्ट गोल्स ऑफ द सेंचुरी ऐसे कंपाइलेशन देख रहा था थोड़े, और मोस्ट ऑफ द वीडियोस में एक गोल बिल्कुल कॉमन है, वो है मैराडोना का एक गोल होता है जहाँ पे वो 7-8 डायरेक्टर से कटा के बॉल कटा के सीधा जाके गोल कर देते हैं। आइकॉनिक गोल। अगर आपने वो नहीं देखा है, आप प्लीज़ जाके मैराडोना आइकॉनिक गोल सर्च कीजिए, आपको गोल जो है दिख जाएगा। एंड काफ़ी स्पेशल वर्ल्ड कप था 1986 का। उसके बाद अभी जो है फिर से काफ़ी स्पेशल वर्ल्ड कप है 2026 का। बहुत सारे रीजंस भी हैं क्योंकि 3 कंट्रीज़ में हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 48 कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4 नई कंट्रीज़ हैं। और सोच के देखिए, इन कंट्रीज़ का पहला वर्ल्ड कप जो है एक्सपीरियंस है, बहुत एक्साइटमेंट है हवा में जो है। उसके साथ साथ खास बात यह है, कतर का भी ये दूसरा वर्ल्ड कप है और पहला ऑन मेरिट वर्ल्ड कप है, तो ये कतर के लिए भी बहुत स्पेशल एक वर्ल्ड कप है। कतर का मैच जो है 13 को होने वाला है स्विट्जरलैंड के साथ। अभी फिलहाल यही बातें बताते हुए काम करते हैं, जरा हम आगे बढ़ते हैं। शापित मूवी का गाना सुनते हैं आदित्य नारायण और सुजैन डिमेलो की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 8:47 हो रहे हैं और मेरे पास जो है कुछ मैसेजेस आए हैं। मुझे दीपक जी ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला हेलो सुदेव, गुड मॉर्निंग, आज थोड़ा लेट हो गया मैं और मैसेज करना में थोड़ा लेट हो गया, वैसे सुन तो मैं रहा था, कुछ काम में उलझ गया था करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने याद किया हमें, वही हमारे लिए मायने रखता है और क्या, है ना। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहेंगे, कुछ खबरों के बारे में आपको रूबरू करवाना चाहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चेंजेस जो है दिन ब दिन आते जा रहे हैं। और अभी अगर हम देखें कुछ टाइम से जो है एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा हम सिरी के बारे में जो है बातें सुन रहे हैं। और इस बार जो है जो अपडेट आया है WWDC 26 में जो बात हुई थी, उसके हिसाब से लोगों ने बोला है कि भाई जो AI जिस मोड पे एप्पल लेकर आ रहा है, सिरी इज गोइंग टू बी अ डार्क हॉर्स इन द AI रेस। एंड डार्क हॉर्स मतलब कुछ बहुत ही तगड़ा एक वो हो सकता है। और जिस तरीके के फीचर्स जो हमने आपको बताए थे सिरी जो लेकर आ रहा है, और इस बार सिरी जो है एक स्टैंड अलोन ऐप की तरह आएगा, ChatGPT की तरह, तो बहुत सारी चेंजेस के साथ जो है एप्पल अपने इंटेलिजेंस को पुश करने वाला है। कुछ टाइम से अगर हम देखें पिछले 2 सालों में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था एप्पल इंटेलिजेंस का, क्या एप्पल इस इंसल्ट का बदला इस बार लेगी नहीं लेगी, ये तो हमें जब वो आएगा अपडेट आएगा तभी पता चलेगा। एनीवे धीरे धीरे धीरे हम देखते हैं किस तरीके से इस AI रेस में एप्पल अपनी जगह बनाता है। और यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे गानों के उस पार, अगले आवर में जब आएंगे तो भाई फुटबॉल का ट्रिविया लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, प्ले करते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे, सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है, फुटबॉल रिलेटेड सवाल है। और सवाल है, विच नेशन हैज द मोस्ट वर्ल्ड कप फाइनल अपीयरेंसेस विदाउट एवर हैविंग वन। ऐसी कौन सी टीम है जो कई बार फाइनल में पहुंच चुकी है मगर जीत नहीं पाई है? कितने ज्यादा बार ऐसा हो चुका है? ऐसी कौन सी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा ऐसे मैचेस का रिकॉर्ड है? आप मुझे बताइए, मैसेज कर सकते हैं मुझे आप 3311063 पर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, विच नेशन हैज द मोस्ट वर्ल्ड कप फाइनल अपीयरेंसेस विदाउट एवर हैविंग वन। एक बार भी बिना जीते सबसे ज्यादा फाइनल अपीयरेंसेस कौन से टीम के पास है वर्ल्ड कप फाइनल में, जरा मुझे बताइए आप। देखते हैं किस किस को फुटबॉल के बारे में ज्ञान है। और यहाँ पे गिनी वेत्सानी 2 का गाना सुनते हैं अल्तमश फरीदी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:19 हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी टीम है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वो फाइनल्स में जा चुके हैं मगर जीत नहीं पाई, कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार ऐसा किया है? तो एक्चुअल आंसर है नेदरलैंड्स। मगर मेरे पास किसी ने भी सही जवाब नहीं भेजा है, थोड़ा सा दुख है मुझे, मगर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे ही तो हम चीज़ें जानते हैं। क्योंकि मुझे मेक्सिको आंसर में आए हैं, ब्राज़ील आंसर में आए हैं, किसी ने अर्जेंटीना भी बोला है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल आंसर जो है इट इज़ नेदरलैंड्स। एंड अगर हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो 3 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने एज रनर्स अप जो है फिनिश किया है, 1974, 1978 एंड 2010। एंड 2010 वाला वर्ल्ड कप जो है देखा भी था मैंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइनल था वो, बहुत मस्त मैच फाइनल था, मगर स्पेन ने जो है पारी मार ली थी। बट या अगर थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाए तो 1974 में वो वेस्ट जर्मनी से 2-1 से हार गए थे, 1978 में 3-1 से अर्जेंटीना में हार गए थे, और 2010 में 1-0 से एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन से हार गए थे। इस बार क्या ये ड्रॉट वो खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो तो देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट देखते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 9:33 हो रहे हैं। और देखिए भाई, फुटबॉल स्क्रीनिंग के बारे में हम जो है आपको बात बताना चाहेंगे, थोड़ा कुछ अच्छे अच्छे जगह के बारे में जहां पे आप जाके मैचेस जो है लाइव देख सकते हैं। और सबसे पहले बात मैं करूंगा मॉल ऑफ कतर के बारे में। मॉल ऑफ कतर में आप जा सकते हैं 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक। वहां पे फ्री व्यूइंग है वैसे स्क्रीन्स में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप इन मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। और कतर की मैच की अगर हम बात करें तो 13 जून को स्विट्जरलैंड के साथ जो है मैच है कतर का। उसके साथ साथ दोहा फेस्टिवल सिटी में भी जो है आप फ्री में मैच देख सकते हैं, और मॉल के ऑपरेटिंग आवर्स में जो है मैचेस जो है आप देख पाएंगे। और मैचेस 1 से 6 बजे तक, यानी कि रात के 1 से सुबह 6 तक मैचेस स्क्रीन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो टीम कतर का मैच हो। और अगर मैच शुरू होता है 12 तो 2 तक ही मैचेस की स्क्रीनिंग चलती रहेगी। और यही दो मेन वेन्यूज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, सुनते हैं उसका ही बनाना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेज़बान सुदेव जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
8: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

उदित जी और अलका जी की आवाज में बड़े मियां छोटे मियां मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई स्टेशन क्लॉक में अभी जो है 9:48 होने वाले हैं, थोड़ी देर में 10 जाएंगे। कशिश यहाँ आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से खबरें कहानियां शेयर करने के लिए, वक्त बिताने के लिए। तो खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिए। जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार जो है कशिश को दीजिए। और जाते जाते जाते आपसे कुछ चीजें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी इंतजार किस बात का है, सीधा जाइए फॉलो कीजिए और चेकआउट कीजिए हमारे कॉन्टेंट को, हमारे पोस्ट को। और फीडबैक्स आप जो है हमें बता सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, आप डीएम कर सकते हैं हमें। उसके साथ साथ आप अपने वीकेंड को एंजॉय करते वक्त अगर कुछ स्टोरी डालते हैं, आप फील फ्री टू टैग अस, आप हमें टैग कीजिए, हम रीशेयर करेंगे आपकी स्टोरी को। साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी इंडिया में है या फिर बाहर कहीं पे भी है, दुनिया में कहीं पे भी है, वो भी हमारे साथ इस जर्नी में आ सकते हैं। करना एक बहुत सिंपल काम है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से रेडियो ऑलिव का ऐप डाउनलोड करना है और बस शुरू करना है इस सिलसिले को। और लास्ट में हम यही याद दिलाना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें ज़रा दुआओं में याद रखना। तो हम निकलते हैं आज के लिए, अब कुछ दिन बाद ही आएंगे। कुछ दिन बाद यानी कि कल तो शो नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, तो संडे मिलेंगे सुबह 6:00। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, वीकेंड में मस्ती कीजिएगा, अपना अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा। जब इंसान खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाता है तब जाके उसके लाइफ में मैसिव चेंजेस आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सेल्फिश होना है, सेल्फ सेंटर्ड होना है। आपको अपने आप को जब आप प्रायोरिटाइज करोगे तब जाके आप दूसरों के लिए एनर्जी स्पेंड कर पाओगे, तो ये कभी मत भूलिएगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, जरा हट के जरा बच के मूवी का गाना प्ले करते हुए मैं जरा टाटा बाय करता हूँ। एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप ऑन सिंग जियो बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक 2ha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए 2ha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
2: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। 2ha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Ankai ke saath CNG ho ya fuel type buses, 64 seater ya compact 26 seater. Paiye behtar mileage aur maximum comfort. Carmel Group ke saath ab safar without suffer. Visit Carmel Group now.
5: This hour is brought to you by
6: Homes R Us. We complete your home.

पता नहीं क्यों ये जो गाने हैं इन्हें सुन के ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ. एंड वहां पर सुबह सुबह जहां आप नाश्ता करने गए हो वहां पर ये गाने बैकग्राउंड में चल रहे हैं. ओए होए क्या फीलिंग आती है यार. मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर और आपके लिए शो लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है. तो देखिए वीकेंड जो है वो बस आ ही गया है. मतलब ये जो थर्सडे है ना ये बिल्कुल उसी नोटिफिकेशन की तरह मुझे लगता है जब आप खाने को कुछ ऑर्डर करते हो या आप कुछ भी ऑर्डर करते हो एंड वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि ऑलमोस्ट देयर, बस आपके डोर स्टेप पर जो है हमारा डिलीवरी पार्टनर आने वाला है या आ चुका है. बस उसी तरीके की फीलिंग आती है जब भी थर्सडे आ जाता है. लेकिन लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि थर्सडे का दिन जो है वो बहुत लंबा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा. कब से कोशिश कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं. अब आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है 3311063 ये जो है आप इस पर जो है मैसेज कर सकते हैं, मुझे ऑडियो नोट भेज सकते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है 3311063. तो जल्दी जल्दी आ जाइए, बता दीजिए मुझे वीकेंड का क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं एंड ये भी मुझे बता दीजिएगा कि किस तरीके की फीलिंग जो है आ रही है, तैयार है या नहीं है वीकेंड के लिए. मैं तो देखो ख्वाब देखने लग गई हूँ कि क्या कुछ करूंगी. तो बस ख्वाबों को एंजॉय करते हुए ख्वाब देखूं. गाना जो है अरिजीत सिंह की आवाज में और आपके रेडियो सेट्स पर इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:11.
1: द बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. यस, जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. ऑफर वैलिड अंटिल 13th जून 2026 ओनली. हरी
3: जोयालिकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर.
4: हाय, मैं हूं विवेक आनंद ओबेरॉय. You're listening to Radio Olive, Geo Bindas.
5: I'm in number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सही बात कही है आदित्य रिखारी जी ने, और मुझे लगता है कि ए अजनबी जब से रिलीज हुआ है तब से आदित्य रिखारी में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ गया है। वैसे देखो कॉन्फिडेंस की कमी तो मुझ में भी नहीं है। 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसरत और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए लाइफ में चाहे कुछ भी हो। अब देखिए मुझ में विटामिन डी की कमी है, मुझ में आयरन की कमी है, मुझ में थोड़े से जो है कॉमन सेंस की भी कमी हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं है। और बस देखो ह्यूमर की कमी भी नहीं, क्योंकि खुद का मजा खुद ही उड़ा देती हूँ तो दूसरे लोग क्या ही उड़ाएंगे। वैसे आज एकदम समर वाइब में मैं आई हूँ। बटर येलो कलर की एक अमेजिंग वाली ड्रेस मैंने पहनी हुई है, हील्स मैंने बेज कलर की पहनी हुई है, बाल मेरे खुले हुए हैं, कानों में मैंने पर्ल वाली इयररिंग्स पहने हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वीकेंड वाला लुक मेरा कैसा सा दिख रहा है। एंड अगर मैं येलो ड्रेस की बात करूँ ना, सो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है येलो ड्रेस के बारे में, लेकिन इसमें मैं थोड़ी देर पर जो है डिटेल में डिस्कशन करूँगी कि वाई अ येलो ड्रेस इज सो स्पेशल। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के मौसम की, टेम्परेचर की। सो अभी की अगर मैं बात करूं, सो जहां मैं हूं वहां का टेम्परेचर अगर मैं बताऊं, सो 43 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस वक्त का टेम्परेचर बता रहा है, लेकिन इट फील्स लाइक 41 डिग्री सेल्सियस। नहीं, मुझे तो देखो 45 डिग्री सेल्सियस जैसा फील हो रहा है, लेकिन अगर बात करें आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की तो वो 45 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड की खुशी जो है वो तो अलग ही होती है, एकदम कूल फील होता है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: तो बस कूल सॉन्ग एंजॉय करते ही
3: कुछ दूर चलते
0: ये गाना एंजॉय करके आओ। अरमान मलिक की आवाज में, एंड घर से निकलो तो सनस्क्रीन लगा के जरूर निकलना। मैं हूँ आपकी कसरत सियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

यार देखो ये वो गाना है जो कोई भी खुद को सिंगर समझता है वो एक बार गाने का ट्राई जरूर करता है. मतलब ये वो पहला गाना होता है जिसे वो गाने की कोशिश करता है और ये गाना अच्छा ही गा लेता है एंड फिर उसको लगता है कि ओ माय गॉड मैं तो कितना अच्छा गाता हूँ. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. अब देखिए एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. सो क्या होता है कि कई बार जैसे अगर आप अपने कलीग्स के साथ लंच कर रहे हो या आप किसी डेट पे गए हो या आप किसी रिश्तेदार के साथ जो है कहीं बाहर जाकर कुछ खा रहे हो एंड तभी एक बाइट जो है चाहे वो फ्रूट हो या कैंडी हो वो अगर ऐसे आपके स्पून से नीचे गिर जाता है तो आप सोचते हो कि उठाऊं नहीं उठाऊं क्या करूं. और अगर वही चीज़ चिप्स का अगर एक पीस जो है अकेले में ज़मीन पे भी गिर जाए तो भी आप ये सोच के उठा के खा लेते हो कि यार 5 second rule 3 second rule खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब मैं बहुत क्लियरली आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिसर्च में ऐसा पता चला है ये 5 second rule 3 second rule जैसा कुछ भी नहीं होता है. आप जो है अगर कुछ भी नीचे गिरा है आपको ऐसी कोई भी जगह पर आपका खाना रखा हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं तो बैक्टीरिया को 1 second भी नहीं लगता है आपके खाने में जो है आ जाने में. सो देयर इज नो 3 second rule नो 5 second rule एंड ऑकवर्डनेस से बचने के साथ साथ अगर बीमारियों से भी बचना है तो ये 3 second 5 second rule वाली जो चीज़ है इसे करना छोड़ दो. आई नो थोड़ा बेबस सा फील होता है कि अब खा नहीं सकते मन तो बहुत है बट कोई बात नहीं हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी देंगे. फिलहाल रॉकस्टार मूवी से ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. थोड़ा सैड है लेकिन वाइब की वाइब. एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास.

गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: खांसी आई है मुझे। इतने जोर से चीख चीख के गाने गाऊंगी, तो यही होगा ना यार। मैं परवाना गाने का नाम, अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पे आ रहा था और मैं हूँ आपकी कशिश। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जो है लाइफ मस्त है मैं लेकर आ गई हूँ। एंड आज मतलब गानों पर आप सब तो वाइब कर ही रहे हो, मैं भी बहुत ज्यादा वाइब कर रही हूँ। इससे पहले गाना आया था जाने कहा मेरा जिगर गया जी, वो ना मेरा और मेरे दादू का जो है फेवरेट फेवरेट फेवरेट गाना है एंड हम आज भी उसमें बहुत ज़्यादा वाइब करते हैं। तो अभी जब वो गाना रेडियो पे मैंने प्लेस किया ना स्पेशली ढूंढ के, तो मुझे मेरे दादू की काफ़ी याद आई थी एंड मैंने उन्हें स्पेशली एक वीडियो बना के भी भेजा कि दादू स्पेशली रेडियो पे आपके लिए ये वाला गाना है। एंड सिर्फ मैं ही तारीफ नहीं कर रही हूँ इन गानों की, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि गाने यार आज कशिश बहुत ही अमेजिंग वाले जो हैं वो लगे हुए हैं। सब्यसाची का मैसेज आया है जिन्होंने लिखा है कि Hi, good morning Kashish and today's songs are really nice. उसके बाद सर का मैसेज आया है जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने भी लिखा है कि मैडम प्लीज ऐसे ही गाने जो है आप चलाते रहिए। और मोहम्मद यूसुफ खान जी ने भी यही कहा था सुबह सुबह कि क्या हो गया कशिश आज घर की याद आ रही है क्या, सुबह सुबह यादों से शुरुआत की है। सो देखिए जैसे जैसे वीकेंड पास आता है ना वैसे वैसे आपको घर की याद आने लग जाती है क्योंकि ऑफिस में आप बिजी रहते हो और जैसे ही आप वीकेंड की तरफ आते हो तो आपको याद आता है कि यार घर पे जब आप वापस जाओगे तो एक रूम है वहां पे फैमिली नहीं है आपकी। लेकिन कोई बात नहीं, कतर ने कभी हमें अकेला फील कराया है क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्या देखिए एक अमेजिंग वाला गाना ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस पर जो है ये गाना आप इंजॉय करके आइए। उसके बाद ऑलिव अपडेट्स जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी सुदेव की आवाज में, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या कुछ खास हो रहा है आज के दिन एंड आगे क्या खास होने वाला है। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि येलो ड्रेस क्यों स्पेशल है इस पर भी बात करेंगे एंड साथ में इस वक्त इंस्टाग्राम पे फैशन के मामले में क्या ट्रेंड चल रहा है इस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अमेजिंग वाले गाने बिंदास वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये गाना
0: एकदम फ्रेश नया नया वाला गाना है आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। सो इसे एंजॉय करो और बस आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: दानातल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाके अलखोर।
3: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:10 यानी 11:10।
0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
5: हाय मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ये गाना आपने सुना 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड कब से मैं एक एक्साइटमेंट जो है वो बिल्ड कर रही हूँ कि येलो ड्रेस बहुत स्पेशल होती है। इसके बारे में बताऊंगी, अब बताऊंगी, तब बताऊंगी, लेकिन फाइनली अब मैं बताने के लिए आ चुकी हूँ। बात हम करने वाले हैं कि एक येलो ड्रेस स्पेशल क्यों होती है। सो इंस्टाग्राम की थ्योरी के हिसाब से येलो ड्रेस थ्योरी जो है वो बहुत ही सीरियस चीज़ है। जब भी आप किसी स्पेशल इंसान से मिलते हो और अगर आप येलो पहन रहे हो, सो इट सिंबलाइजेस कि आप बहुत खुश हो। अगर आपको बॉलीवुड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं वो भी बता सकती हूँ। आपने वो देखिए कभी खुशी कभी गम, उसमें एक गाना था ये लड़का हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह वाला गाना, एंड उसमें काजोल ने कौन से कलर के कपड़े पहने, येलो कलर के कपड़े पहने। ओके, आपने केदारनाथ मूवी देखी है, उसमें एक गाना है स्वीट हार्ट, उसमें सारा अली खान ने एंड सुशांत ने जो डांस किया है स्वीट हार्ट गाने में, उसमें सारा ने कौन से कलर के कपड़े पहने, येलो कलर के कपड़े पहने। यस, रब ने बना दी जोड़ी तो आप सबने देखी होगी शाहरुख खान की, उसमें मेजर कपड़े जो है वो कौन से कलर के पहने गए, येलो कलर के पहने गए। यस, एंड एक लास्ट एग्जाम्पल दूंगी कि आप समझ जाएंगे। आपने यस बॉस का वो वाला गाना सुना है, मैं को यस गीत गाऊं, बस उस गाने में जूही चावला ने कौन से कलर के कपड़े पहने, येलो कलर के कपड़े पहने। सो इट्स ऑलवेज अ ब्लैक सूट एंड अ येलो ड्रेस, एंड दिस मेक्स द दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सो अमेजिंग। प्यार का कलर लोग कहते हैं कि लाल होता है, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से तो यार वो येल्लो होता है। येलो सिंबलाइजेस कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं, आप सामने वाले को अपनी हैप्पीनेस पूरी तरीके से मान चुके हैं, तब इंसान जो है येलो पहनता है। एंड येलो जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि येलो सिंबलाइज करता है समर को, गर्मी को। यस, बिकॉज उसमें ना एक अलग टाइप की कूलनेस है, एंड बस इसी कूलनेस के बाद जो है एक अमेजिंग वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। इसको एंजॉय कीजिए, एंड इसके बाद इंस्टाग्राम पे फैशन के दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, एंड बहुत ही खास गाना जो है वो मैंने आपके लिए प्लेस किया हुआ है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग
0: अगेन अ येलो ड्रेस स्वीट हार्ट गाना केदारनाथ मूवी से आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, से एंजॉय कीजिए। और क्या आपके पास एक येलो ड्रेस है बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके 3311063। फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए देव नेगी की आवाज में। गाना स्वीट हार्ट, मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
2: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: करेगा और गमों को चख देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आपकी कशिश आ गई है यार, तो फिर गम कैसे हो सकता है आपकी लाइफ में? अब तो लाइफ आपकी सिर्फ मस्त होगी। हाँ जी, क्योंकि शो का नाम लाइफ मस्त है। 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड जैसे आपको बताया कि शो जो है वो मैं लाइफ मस्त है आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड जैसे वादा मैंने आपसे किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इंस्टाग्राम पे इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है अगर हम फैशन की बात करें। सो वापस ना काउबॉय जो फैशन था वो वापस आ गया कहीं ना कहीं एक नए ट्विस्ट के साथ। जो फ्रिंजेस हम बचपन में पहना करते थे, झालर टाइप वाला जो फैशन था वो वापस आ गया। मुझे याद है कि मेरी मम्मा जो है जीन्स से मेरे लिए केपरी बनाया करती थी जब मेरी जीन्स छोटी हो जाया करती थी, एंड उसके नीचे जो उसकी हेम होती है उस पर ऐसे कट्स लगा देती थी। सो फ्रिंजेस बन जाते थे एंड एक डिजाइन बन जाता था, तो नीचे से सिलाई नहीं लगानी पड़ती थी एंड धागे भी नहीं निकलते थे। सो वो फैशन अब वापस लौट कर आ गया है, एंड वो हैंड बैग्स में, जैकेट्स में, जीन्स में, टॉप्स में, शर्ट्स में, इवन फॉर्मल वेयर में अगर मैं बात करूँ वहां पर भी आ गया है। सो फ्रिंजेस को एक बार ट्राई जरूर दीजिए। एंड क्या आपके वार्डरोब में ऑलरेडी कुछ फ्रिंजेस वाला है, यानी वो जो झालर लटकने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो क्या अभी भी है? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस वक्त इंस्टाग्राम का कौन सा फैशन ट्रेंड जो है वो सबसे अच्छा लग रहा है। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि येलो ड्रेस आपके पास है या नहीं है, इन सब सवालों का जवाब जो है सेम नंबर में देना है, देखो 3311063। और फिलहाल अगला जो गाना है उसे थोड़ा गौर से सुनो, क्योंकि गाने का नाम है सुनो गौर से दुनिया वालों, शंकर महादेवन की आवाज में।
1: सुनो गौर से दुनिया वालों,
0: मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान
1: भजन मान
0: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM
1: जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: शुभोय बादशाह।
1: इस गाने को चलाने का एक लौता मोटिव बस यही था कि आप जो है वो पानी पीने को जो है वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएं। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलू पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड इतनी ज्यादा जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसके बीच में आपको बस इतना करना है कि पानी पीते रहना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाना है जब भी बाहर जाएं। एंड देखिए, गवर्नमेंट जो है वो तो सारे अच्छे काम कर ही रही है आपके लिए। मिनिस्ट्री जो है उन्होंने हर रोड पर आपके लिए एसी लगा दिया है। एंड काफी सारे वर्कर्स जो बाहर काम किया करते थे धूप में, उन्हें भी ये कह दिया है कि यार देखो धूप में बिल्कुल काम नहीं करना है। तो आप भी अपना ख्याल रखिए एंड सनस्क्रीन लगाइए, पानी पीते रहिए। एंड बाकी अगर वीकेंड पे आपके पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है और सोच रहे हो कि यार कशिश सारा OTT देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब क्या देखा जाए, तो मैं जो है आपके लिए एक अमेजिंग वाली पिक आपको रिकमेंड करने के लिए आ गई हूँ। पिक से मेरा मतलब फोटो वाला पिक नहीं, पिक मतलब मैं उठाकर चुनकर आपके लिए लेकर आई हूँ एक रिकमेंडेशन। बॉलीवुड की 2018 की मूवी है, मूवी का नाम पटाखा है। विशाल भारद्वाज ने जो है इसे डायरेक्ट किया है एंड ये बहुत ही यूनिक, लाउड और एंटरटेनिंग रूरल कॉमेडी है इंडिया से, जहाँ पर जो दो बहनें होती हैं वो आपस में काफ़ी लड़ती हैं, काफ़ी झगड़ती हैं, बचपन से एक दूसरे की जानी दुश्मन टाइप होती हैं, लेकिन फिर किस तरीके से उनके बीच में चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं, वो रेस्लिंग करती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जो ट्विस्ट है वो मैं नहीं बताऊँगी एंड बाकी आपको खुद देखना है। अगर मेरे से आप पूछे कि यार कशिश तुम कितने नंबर देना चाहोगी इस मूवी को, तो मैं 5 में से एटलीस्ट 3.5 या 4 तो चलो मैं दे सकती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी वेरी नाइस। म्यूजिक जो है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है। आपको मूवी देखते देखते रियलाइज होगा कि ओह ये गाना मिलेगा क्या। वैसे अमेजिंग वाला गाना तो मैं आपको सुना रही हूँ, मेरा करंट ऑब्सेशन है ये गाना। सो इस गाने को एंजॉय करो, ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
0: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.
1: Baron gari ka naam hai. Enjoy karo aur kaho Jio Bindaas.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

इस मूवी से फुल ऑन वाइब वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। हां जी वेलकम बैक, मैं हूं आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड सीरियसली लाइफ मस्त है एंड कतर में आने के बाद ये जो फुटबॉल वाली वाइब मैं इंजॉय कर पा रही हूँ यार, सीरियसली मैंने कभी इंजॉय नहीं करी थी। मतलब हाँ, इंडिया में भी फुटबॉल की वाइब होती है, फीफा वर्ल्ड कप जब होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है बिहेव करने लग जाते हैं लोग, स्पेशली मेरे जो गाय फ्रेंड्स हैं उन्हें जो है अलग अलग टीम्स को सपोर्ट करते हैं, वो बातें करते हैं कि यार आज किसका मैच है, कल किसका मैच हुआ, एंड बहुत ही अमेजिंग वाइब होती है। एंड कतर आने के बाद उस वाइब को जो है मैं जी पा रही हूँ। पहले मुझे सिर्फ लगता कि हाँ ठीक है वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वाइब है, जो लोग एक्साइटेड है ना, मतलब मेरे तो परे है, मेरे सोच से परे है ये वाला चीज। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है एंड हर जगह इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कतर में भी काफ़ी सारी जगहों पर स्क्रीनिंग जो है वो होने वाली है एंड वो सुदेव ने आपको सुबह बताया ही है, और अगर नहीं बताया है तो थोड़े दिन में बता देंगे हम। वैसे अगर मैं इंडिया की बात वापस करना शुरू करूँ ना, तो इंडिया में भी फीफा वर्ल्ड कप की वाइब जो है वो आने लग गई है। स्पेशली अगर मैं साउथ इंडिया में बात करूँ तो वहाँ पर जर्सीज के साथ नीचे जो लुंगी है वो मैच करके एज अ क्वाड सेट जो है वो मिल रही है मार्केट में। एंड हर जगह आप, मेरे भाई ने मुझे अभी वो घूमने गया हुआ है केरला, एंड वहाँ पर उसने मुझे वीडियो बना के भेजी एक स्ट्रीट की, जहाँ पर दोनों साइड अलग अलग टीम्स की जर्सी और मैचिंग जो लुंगी होती है वो मिल रही है। वाओ मतलब मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी इतना ज़्यादा वाइब रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ क्रिकेट पगलूनो। सो क्रिकेट की बात भी करेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग वाला गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। इस गाने को एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:09।
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
5: जियो बिंदास।
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: गाने का नाम आखिरी सलाम, मूवी का नाम दे दे प्यार दे टू। देखी है मूवी मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि दे दे प्यार दे वन जो थी वो इससे थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी ज्यादा बेटर थी। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो है वो मोटिवेट हुए होंगे कि इसका ना पार्ट टू बनाना चाहिए, हमें सीक्वल बनाना चाहिए। खैर, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मुझे ना कभी कभी ये लगता है कि अच्छा हुआ फीफा वर्ल्ड कप या क्रिकेट ओडीआईज या टी20 लीग ये सब एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें ना ईज हो जाता है, एक हमारा एक टाइम टेबल बन जाता है कि ओके इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये मैच देखना है। एंड एक एजेंडा होता है ना घर जाकर, वरना वीकेंड्स अक्सर ऐसे बीत जाते हैं कि क्या देखा जाए, कुछ देखना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, काम कर लेने चाहिए, आखिर किया क्या जाए। एक रिसर्च में अभी पढ़ रही थी, उस पर ये लिखा था कि 90% कपल जो है वो एक्चुअल में कोई कंटेंट देखने से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर देते हैं ये सोचने में कि आखिर क्या कंटेंट देखना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है, क्योंकि अब सब जो है एकदम चिपक के बैठेंगे स्क्रीन से और यही चीज़ देखने वाले हैं। एक के बाद एक मैचेस आएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, और उसका दिमाग लगाना भी पड़े तो उसका भी इंतजाम आपकी कशिश ने कर रखा है। हर रोज अपने शो में एक मूवी एक सीरीज जो है मैं रिकमेंड करती हूँ आपको, सो बस आप जो है स्टे ट्यून रहा करो। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी मूवी का सजेशन है या ऐसी सीरीज का सजेशन है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, 3311063 इस पर आकर जो है आप मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं बाकी लोगों से बांट दूंगी। क्या है ना, प्यार बांटने से बढ़ता है, एंड कंटेंट अगर आप जितना बांटेंगे उतना ज्यादा कंटेंट आपको भी पता चलेगा। डैम कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट पर,
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग
0: अरिजीत सिंह की आवाज में, गाने का नाम रंजना, इसे एंजॉय करो और वापिस लौट कर आओ, कुछ और अमेजिंग बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

अगर इतने प्यार से किसी का दिल कहेगा कि आ जाओ लौट कर, तो मैं कैसे नहीं आऊंगी। आई नो आपका दिल यही कह रहा है, कशिश गाने चलने दो यार, अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि आज गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं यार कशिश, क्या बात है।

106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए ले आई हूँ लाइफ मस्त है एंड मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि वीकेंड आ रहा है एंड अगर आप में मतलब अभी तक अपने पार्टनर को सॉफ्ट लॉन्च हार्ड लॉन्च नहीं किया है सो किस बात की देरी है. मतलब लोग जो है अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा AI पे प्रॉम्प्ट आ गया है एंड सोशल मीडिया जो है वो फ्लडेड है इस वक्त सिर्फ इस ट्रेंड से कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को सॉफ्ट लॉन्च कर सकते हो या दुनिया को बता सकते हो कि आप किसी के साथ हो. क्या रोक रहा है लड़कों आपको ये बताने से लोगों को कि आप अपनी पार्टनर के साथ हो या लड़कियों को कि आपके पास एक पार्टनर है. एक अश्योरिटी मिल जाती है आजकल. पहले जो है वादे कस्में ये सब होते थे लेकिन अब सोशल मीडिया की एक पोस्ट जो है उससे पता चलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो एक इंसान की तरफ. क्योंकि लोग नहीं पोस्ट कर रहे हैं, लोग बिल्कुल पोस्ट नहीं करना चाहते हैं और उनका सबसे मेजर रीज़न जो है वो ये होता है कि यार नज़र लग जाएगी. नज़र लगती है दो दिन के लिए लेकिन ये अश्योरिटी हो जाती है लाइफ टाइम की. एटलीस्ट आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात तो नहीं रही कि ये मुझे पोस्ट क्यों नहीं कर रहा. बस यही बातचीत जो है ये बादशाह और उनकी वाइफ के बीच में भी हुई थी. सो बादशाह की जो वाइफ है जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है एंड उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिस पर उन्होंने ये लिखा कि आज आपको जो जो मुझसे पूछना है वो आप पूछ सकते हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चन यही थे कि आप और बादशाह एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते और एक दूसरे के बारे में पोस्ट क्यों नहीं करते. सो बहुत ही क्यूटली इन्होंने जो है बादशाह को टैग किया और लिखा कि पतिदेव बताइए कि आप मेरी फोटोज जो है वो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डालते. इसका आंसर जो है वो बादशाह ही देंगे. सो बादशाह बीइंग अ रैपर मैं आपसे जो है एक बहुत ही अमेजिंग रिप्लाई जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो अभी तक आया नहीं है लेकिन मैं कंटिन्यूसली स्टॉक कर रही हूँ बादशाह को कि आखिर वो इसका रिप्लाई क्या देते हैं. बाप रे खांसी आ गई मुझे, इतने जोर लगा के बातें करने लग जाती हूँ मैं कई बार लेकिन कोई बात नहीं मैं जरा पानी पी के आती हूँ. आप जो है अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करो. और आपकी कशिश के साथ क्या कर रहे हो जियो बिंदास. मैं पानी पीने जा रही हूँ आप भी पियो, हाइड्रेटेड रहो यार.

मेरे जाने से आपकी महफिल बिल्कुल वीरान नहीं होने वाली है, सिर्फ तू सुनने, क्योंकि अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आते रहेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है अनूप जैन से बेहतर और कोई लड़कियों को जानता ही नहीं है यार. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड लाइफ मस्त है शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे. अब देखिए जाने का वक्त हो गया है, मेरे अमेजिंग गाने जो है वो आप सुनते रहेंगे, वीकेंड एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन कल भी हमारी मुलाकात होगी टेक टॉक में. सो आना वहाँ पर बिल्कुल भी मत भूलना. अगर कोई मैसेज है मेरे लिए, कुछ भी आप कहना चाहते हो तो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर कह सकते हैं. बाकी वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाओ, पानी पीते रहना, सनस्क्रीन लगाते रहना एंड मुझे दुआओं में याद रखना.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: This is Amaira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तनिषा
1: आबिदा परवीन और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में बड़ा ही सुंदर गाना छाप तिलक ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा के जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. इस गाने के बारे में एक बहुत बढ़िया बैक स्टोरी बताती हूँ. सो व्हेन दिस सॉन्ग वाज बीइंग शॉट ना, सो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, रिहर्सल्स चल रही थी. आबिदा परवीन जी और राहत फतेह अली खान साहब वर रिहर्सिंग की फाइनल शॉट के पहले एक रिहर्सल करते हैं और आपने जो अभी सुना ऑडियो वो रिहर्सल वाले में था. वो टेक इतना अमेजिंग था कि उन्हें दोबारा से उसका टेक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. फाइनल शॉट की तरफ वो गए ही नहीं क्योंकि रिहर्सल वाले इतना अमेजिंग था. देख रहे हो लेजेंड्स की बात ऐसी होती है यार. और आप बताइए कैसे हैं, खुश तो बहुत हो गए आप हैं क्योंकि थर्सडे जो आ गया है जी, वीकेंड आ गया है, तो खुशी की लहर जो दौड़ पड़ी है वो तो गानों में भी पता चल रही है. Beautiful track in the voice of Avi. Slow motion angreza from the movie Bhag Milka Bhag. इंसानों की फितरत होती है ना, ये जो चीज करने को मना करोगे वो तो सबसे पहले करनी होती है ना. तो मैं आपको लेकिन मना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ फटाफट से मैसेज करो 3311-1063 पर और बताओ कैसे हो, क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो, कहाँ से सुन रहे हो, लंच वंच हुआ कि नहीं, वीकेंड्स के क्या प्लान है, सब विस्तार में लिख के बता दो मेरी जान. इंतजार कर रही हूँ, सुन रहे हो रेडियो ऑल.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: Tanisha.
1: Beautiful track in the voice of Arijit Singh and Nikita Gandhi from the movie Kedarnath. Kafirana suna aapne Tanisha ke saath, only on Radio All 106.3 FM. All of recharge chal raha hai yahan par, aur ek bahut important baat batane wali hu main. Pichle 2-3 din se jab se maine ye quote padha hai, main har kisi ko ja ke yahi cheez bol rahi hu ki dekho is baat ka khayal rakho. To ab aapko bhi sunane ka waqt aa chuka hai, dekho is baat ka khayal rakho meri jaan, ki whenever somebody is putting butter on the bread, they always have a knife in the hand. हाँ जी, समझे बात को? मक्खन लगाने वाले इंसान के हाथ में चाकू जरूर होता है, तो जरा संभल के रहना. जिसकी भी बोली में मक्खन आपको महसूस हो रहा है, बस समझ जाओ कि यहीं आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. बाकी समझदार तो आप हो ही. हाँ जी, इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर इस चिलचिलाती गर्मी में इन द वॉइस ऑफ डैनी एंड एवी. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: तनिषा।
1: मधुश्री की आवाज में रहमान साहब के म्यूजिक के साथ युवा मूवी से कभी नीम नीम कभी शहद शहद, ओ माय गॉड, इतना प्यारा लगता है ना मुझे ये गाना, और जिस तरह से मधुश्री जी ने गाया है बहुत ही खूबसूरत। तनिषा के साथ है आप रेडियो 106.3 एफएम पर, ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर। और जो समर वर्क बैन लगा है अभी कतर में जून 1st से लेकर सितंबर 15 तक, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का, इट इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, यू नो द वर्कर्स हु आर वर्किंग आउट इन द सन, उनकी सलामती के लिए ये डिसीजन लिया गया था, ये जो बैन लेकर आए थे। और अगर इसका कहीं पे भी वायलेशन होता है तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होंगी लोगों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि दे आर कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस टू एंश्योर कंपनीज कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। एक भी कंपनी ऐसी मिली जो कि यू नो वायलेट कर रहे हैं इस बैन को, तो दे विल हैव टू फेस फुल और पार्शियल क्लोजर्स ऑफ द वर्क साइट्स। सो मेक श्योर कि इस चीज का ध्यान रखा जाए, बिकॉज द वेदर इज सुपर सुपर हॉट राइट नाउ, और जो हीट की वजह से स्ट्रेस होता है, हेल्थ पे जो अफेक्ट पड़ता है, हीट स्ट्रोक्स के चांसेस हैं, सनबर्न हो सकता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नो। सो उससे बचने के लिए ये लेकर आया गया है डिसीजन। सो प्लीज कंप्लाई विद दिस एंड अपना ख्याल रखो मेरी जान। संतरा रेडियो ऑल जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
3: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Rejoice चल रहा है यहाँ पर and FIFA craziness has started from today. और अगर आप देखना चाहते हैं FIFA World Cup 2026 तो कुछ जगह है जहाँ कतर में जाकर आप देख सकते हैं. You can visit the Qatar Fan Zone at Almaha Island and you can go to Mall of Qatar. ओएसएस स्क्रीन पर वो लाइव स्क्रीनिंग होने वाली है. आप वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया जा सकते हैं. यू कैन गो टू मॉन्ट्रियन दोहा. मैरिट माकी में भी हो रहा है इसका लाइव ब्रॉडकास्ट. यू कैन गो टू द क्लब हाउस इन लुसेल, टॉर्नेडो ड्यून प्लाजा वेस्ट बे एंड ऐसे बहुत सारे कैफेज और यू नो प्लेसेस हैं जहां पर आप लाइव मैचेस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और स्ट्रेंजर्स के साथ जाकर देख सकते हैं. इट वुड बी फन, राइट? सो लेट द मैडनेस कंटिन्यू एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ जियो विंदास.

0: स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और Doha Bank and Lulu has brought something really amazing for you. अब आपका shopping experience जो है और भी ज्यादा rewarding हो जाएगा. जी, all you have to do is apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card and you can get 500 रियाल तक के Lulu shopping vouchers. Not just that, Lulu stores पर जब भी आप spend करेंगे तो आपको 5% savings भी मिलेंगी Lulu points के form में. और साथ ही you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals और बहुत सारे lifestyle privileges भी. तो देर किस बात की है, तो जल्दी से जाइए, apply कीजिए, get your card activated and Lulu पर minimum 1 रियाल spend करो बस और फिर rewards का फायदा उठाओ. This offer is valid till 30th June only. तो जल्दी जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Card and stay tuned to Radio Olive Trio Bindas.
0: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

Tanisha. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ पाठशाला गाना सुना आपने रंग दे बसंती मूवी से. भाई बहुत क्रेजी मूवी है, नहीं देखिए तो जरूर देखो. बाय द वे, एक चीज हुई है इंस्टाग्राम पे जो इन्होंने चुपचाप से कर दी है. पता नहीं आप सबके साथ हुआ ये नहीं या फिर सिर्फ मेरे ही फोन में हो रहा है. You cannot see views of other people's videos now. Like आप अपने तो obviously देख सकते हो, लेकिन किसी और के पेज पे भी जाते थे जब आप उनकी reels देखते थे तो आपको नीचे views नजर आते थे, right? कितने views मिले, कितनी reach मिली है, पर अब नहीं देख सकते. वो views नजर ही नहीं आ रहे हैं. यार ये तो गलत बात हो गई. अब कैसे लोग फ्लॉन्ट करेंगे कि अरे 1 million व्यू की वीडियो हो गई है मेरी, 10 million हो गए हैं. दिस हैज ऑल्सो बिकम अ थिंग टू फ्लॉन्ट फॉर पीपल नाउ. इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं हम सोशल मीडिया से. बट यार सम हाउ इट मैटर्स अ लॉट इन बिजनेसेस एंड यू नो फॉर द इन्फ्लुएंसर्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उनके लिए. सो या यू कांट सी दैट एनी मोर. अगर आप देख पा रहे हो तो जरा मुझे बताओ चेक करके, तो मैं फिगर आउट करूँगी मेरे साथ क्या दिक्कत है. स्टे ट्यून्ड.

0: तनिषा
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Retort चल रहा है यहाँ पर और Doha Bank and Lulu has brought something really amazing for you. अब आपका shopping experience जो है और भी ज्यादा rewarding हो जाएगा. जी, all you have to do is apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card and you can get 500 रियाल तक के Lulu shopping vouchers. Not just that, Lulu stores पर जब भी आप spend करेंगे तो आपको 5% savings भी मिलेंगी Lulu points के form में. और साथ ही you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals और बहुत सारे lifestyle privileges भी. तो देर किस बात की है, तो जल्दी से जाइए, apply कीजिए, get your card activated and Lulu पर minimum 1 रियाल spend करो बस और फिर rewards का फायदा उठाओ. This offer is valid till 30th June only. तो जल्दी जाइए और apply कीजिए for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Card and stay tuned to Radio Olive, Trio Bindas.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Ankai ke saath CNG ho ya fuel type buses, 64 seater ya compact 26 seater, paiye behtar mileage aur maximum comfort. Carmel Group ke saath ab safar without suffer. Visit Carmel Group now.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone,
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.

0: song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

0: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: ले लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
5: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
4: ऑलिव रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: In association with
9: Doha Bank,
8: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.
10: Hello!

0: Tanisha. Tanisha.
1: You're listening to Radio All of 106.3 FM. Tanisha आपके साथ All of Recharge चल रहा है यहाँ पर. श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में दिल डूबा खाकी मूवी से सुना आपने ये गाना, बहुत ही कमाल. और भाई एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से जाओ रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल फॉर आवर सोशल्स, जाकर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, सब जगह. क्योंकि कुछ बढ़िया लोगों के इंटरव्यूज हम करते हैं, वो हम छोटा सा स्निपेट सोशल मीडिया पे डालते हैं, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बट द इंटायर वीडियो गोज ऑन यूट्यूब. तो आपको यूट्यूब पर भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अभी जो आज से फीफा मैडनेस शुरू हुआ है वो आप हमारे सोशल मीडिया पर भी देख पाएंगे. बहुत कमाल कमाल की हिस्ट्री से जो स्टोरीज हैं जिन्होंने शेप किया है फीफा को, वो सब और बहुत सारे अमेजिंग प्लेयर्स की बैक स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी. एंड आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, सो व्हाटएवर से जाओ और फॉलो कर लो, ठीक है. हाँ जी, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक इन द वॉइस ऑफ अली जफर. स्टे ट्यून्ड एंड जुबिन दास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: In association with
9: Doha Bank,
8: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में ओ बेदर्दिया फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं वकार। मैं तो नहीं हूँ, आप अपना देख लो। बाकी अरिजीत सिंह की आवाज में जो दर्द है ना भाई साहब, नॉन एग्जिस्टेंट एक्स को भी वो याद दिला देते हैं, और जो एग्जिस्टेंस में है अभी वो तो देखो याद आ ही जाएंगे इसे सुन के, है ना, है ना। आई नो नहीं करना है, ठीक है, अपना वीकेंड इस तरह से बर्बाद नहीं करते होते। वीकेंड आया है, हमने इंतजार किया है इसका इतना, लास्ट सैटरडे से लगे थे कि कब आएगा, अब आ गया है, तो इसको बढ़िया तरीके से इंजॉय करना है। फालतू के थॉट्स में ऐसे खोकर उसे बर्बाद नहीं करना है, सोच के उसे बर्बाद नहीं करना है, समझ रहे हो बात को। हाँ जी, सो एंजॉय योर वीकेंड द मोस्ट। काम का स्ट्रेस काम के टाइम पे लेंगे, छुट्टी है ना, अभी छुट्टी का मजा लो। बढ़िया मूवीज आ रही हैं यार, मैं वापस आऊंगा इज रिलीजिंग टुमारो, सो आई एम तो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट वन, एंड आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट। आप भी देखिए, एंड अगर आप यू नो घर पे बैठ के कुछ बिंज वॉच करना चाहते हैं तो देर इज द आर्ट ऑफ सैरा, इट्स अ के ड्रामा, अमेजिंग शो, आई एम वॉचिंग इट राइट नाउ, और बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ OTT पर भी मिल जाएंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो यार, और बचेगा वक्त अपने साथ भी स्पेंड करना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है यार। ये बात मैं आपसे सैटरडे को आके फिर से पूछने वाली हूँ, आपने अपने साथ वक्त बिताया या नहीं। बाकी फिलहाल चलती हूँ, मिलेंगे सैटरडे दोपहर 2 बजे, अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM। दिस इज तनिषा विद यू, जियो बिंदास मेरी जान।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

Oh no! अगर आपने मेरे को कल मिस किया था तो मैं बता रही हूँ कि मैंने भी आपको मिस किया था, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी कभी एक दिन का ब्रेक जो है वो जरूरी होता है, अपने आप को ब्रेक दे के आई एम तो हैप्पी ना हो। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल

हमारे प्यार को नजर न लगे, चार घंटे में भी अपने ही होने वाले हैं। वीकेंड का क्या प्लान है आपका? 3311063 पर जब आप ये लिखेंगे तो मुझे ये भी बताइएगा आपका आज का दिन कैसा रहा आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ। 3311063। मुस्कुराओ यार, सिमरन कौर का शो सुन रहे हो और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को भी सुन रहे हो।

0: आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं, तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
5: नीना गुप्ता,
4: रेडियो आप सुन रहे हैं, रेडियो ओलिव 106.3।
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो
8: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
11: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जो है वो चला हुआ है, जो अपने यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, उसकी सब लोग मेमोरीज जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को फोमो होने लग गया। आई एम लाइक यार, फिर मैंने भी मेरी मेमोरीज निकाली और जो वीडियोस, जो मैच मैंने अटेंड किए थे, जो फैन जोन्स में मैं गई थी, वो जो फन हम लोगों ने देखा था, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आए थे, वो अलग लेवल का फन था यार, जब अपने कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। सो या वो वाली मेमोरीज मैंने भी मेरी स्टोरीज पे शेयर की, और अब एकदम अनदर लेवल का जो पागलपन है वो फुटबॉल लवर्स के लिए होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ, ये मतलब कतर की बात करें ना, कतर जो है वो एकदम मैड है, एकदम झल्ला है, और उसके बहुत सारे फैंस हैं फुटबॉल को लेकर में, ठीक है। सो बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, ओके। सो ये जो मैच है ये बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरे को आज ही पता लगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे मतलब फीफा के बारे में चीज़ें जो है वो ज़्यादा नहीं पता है। गोल होता है बस उतना ही पता लगता है। 32 टीम्स होती थी पहले, 64 मैचेस होते थे, लेकिन दिस टाइम 48 टीम्स के साथ 104 मैचेस जो है वो होने वाले हैं। पहली बार जो है वो इसको जॉइंटली होस्ट किया जाने वाला है कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप मुझे बता सकते हैं 3311106 पर।

0: लेकिन जबरदस्त इवनिंग्स आप सुन रहे हो सिमरन कौर के साथ। बेबी जियो बिंदास, हंस क्यों रहे हो यार, मुस्कुरा रहे हो? ओहो सही है यार, ऐसी रहा करो यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

हाँ जी, ऑफिस में ना सब एक दूसरे का प्लान कैंसिल करवाने को लगे हुए हैं। उसका एक रीजन है, वीकेंड तो है ही, लेकिन वीकेंड के अंदर एक प्लान है। जी मैं कहती सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ, और ये प्लान है इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने की। एग्जैक्टली एक दूसरे को बोल रहे हैं कि पहले हमको ये था कि ये फिल्म कल रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी जब ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसके टिकट्स जो है वो आप बुक कर सकते हो। सो इसका ट्रेलर देखने के बाद ही हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि यार ये फिल्म देखनी ही देखनी है। नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शार्वरी, रजत कपूर, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एक्टर हैं, और इसके गाने ऑलरेडी आप हमारे सोशल रेडियो पे जो है वो सुन रहे हैं एंड मजा आ रहा है। बट अब ये फिल्म देखने का टाइम जो है वो आ चुका है। सो इस वीकेंड पे अगर आपके पास कुछ और नहीं करने के लिए है तो आप ये फिल्म जो है वो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इसके रिव्यूज मैं काफी ज्यादा सुन रही हूँ, कह रहे हैं कि रिव्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो ये वाला प्लान जो है वो डेफिनेटली आप बना सकते हो, मैं वापस आऊंगा। और उसके साथ नेटफ्लिक्स पे अगर आप कुछ देखना चाहते हो और आपने ये फिल्म नहीं देखी थी, मैंने भी नहीं देखी थी, भूत बंगला अक्षय कुमार की, वो कल रिलीज होने वाली है। मुझे लगता है कि आज रात 9:30 बजे आ जाएगी, क्योंकि इंडिया के 12 जो है वो बज जाते हैं। तो आपके पास बहुत कुछ है इस वीकेंड में देखने के लिए, और लीजिए मैं वापिस आऊंगा से ये गाना, इश्क मस्ताना, बड़ा प्यारा वीडियो है यार इस गाने का।

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: अरिजीत सिंह की आवाज एंड शाहरुख खान है रिलीज हो चुकी अपने कतर में, उसके साथ साथ भूत बंगला जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। मूवी से, मूवी के साथ जितना प्यार है ना, वैसे ही जो लोग मूवी के टाइम पे बिहेव नहीं करते, मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा चिड़ भी है। चिड़ ये है कि जब भी हम थिएटर में बैठे होते हैं हम क्या करने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं आराम से, और वहां पे जबान बंद रखनी होती है क्योंकि सामने मूवी चल रही है और वो घर रही है, यहाँ पे हम अपनी जबान नहीं खोल सकते। पर बहुत सारे लोग हैं वो पूरी मूवी में बोलते रहेंगे पटर पटर पटर पटर, और मतलब मैं आपको मेरे एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। इंडिया में थी मैं कहीं पे, मैं गई मूवी देखने के लिए, और वहां पर मतलब एक ग्रुप बैठा है पूरा, वो बातें करे जा रहा, मतलब मेरे को मूवी नहीं समझ लग रही है, भाई तुम इतना बात क्यों कर रहे। फिर मैं ना उठ के चिल्ला दी, मैंने बोला यार शट अप स्टॉप इट, इस तरह से कर दिया मैंने। अब हमको थोड़ा ये भी लगता है कि यार रूड हो जाएगा, लेकिन मैंने कर दिया यार, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो 5 मिनट चुप के फिर पटर पटर स्टार्ट हो गई है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी हो, चाहे कतर में भी हो, जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं कृपया आप बिहेव कीजिए और अपनी बातें से लोगों को परेशान मत करिए, ठीक है। जब सब लोग, जब फिल्म में हंसी आ रही और सब लोग हंस रहे हैं तब हंस लीजिए, ठीक है। जब सब लोग डर रहे हैं मूवी में तब डर लीजिए, ठीक है। ऐसे भी ऐसा आपको ऐसा रोबो बन के बैठने की जरूरत नहीं है, बट या अपने घर की कहानियां जो है वो मूवी के टाइम पे ना कीजिए, एक रिक्वेस्ट है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लोग परेशान करते हैं यार मूवी के टाइम पे, बातें करते हैं?
1: 3311 1063
0: पर डोंट से वाओ, ओके गाना इज वाओ ब्रो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher।
0: Lulu Stores पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu Points के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

आंटी आ गए हैं यार, अरिजीत सिंह की आवाज डियर जिंदगी से। मैं सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ, थोड़ा दर्द ओए होए होए।

0: नंबर गाने जो है वो आप लोगों के लिए चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ ना वाकई में बड़ी अच्छी है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: देखो यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को घर में कुत्ता रखना पसंद है, किसी को बिल्ली रखना पसंद है। मैं डॉग लवर हूँ यार, मुझे बहुत पसंद है। मुझे बिल्लियां उतनी समझ नहीं लगती है, लेकिन क्या होता है कि हमको इनकी जबान भी समझ नहीं लगती है। बव बव करके कुछ भी बोल देंगे, म्याऊं म्याऊं करके कुछ भी बोल देंगे। लेकिन एक चाइनीज टेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है एक AI पावर्ड स्मार्ट कॉलर, पेटी चैट के नाम से, PETTICHAT पेटी चैट के नाम से, जिसमें आप वो कॉलर अपने कुत्ते या बिल्ली के गले में अगर बांध देंगे ना, तो वो जब बव बव या म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं ना, वो आपको ह्यूमन वॉइस में ट्रांसलेट करके बताएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको भूख लगी है, वो इरिटेट हो रहे हैं, या फिर उनको दो नंबर जाना है, एक नंबर जाना है। वो सारी चीजें जो है वो बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए 10,000 रिजर्वेशन ऑलरेडी लोगों की आ चुकी है, बट मेरे को सुनने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग और बढ़िया लग रहा है यार, कि वाकई में ऐसा भी होगा क्या। सो अमेजिंग है व्हाट द वायरल में ये था। और बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके ऊपर टेंशन मेरी पूरी है, टेंशन ना लो। पति पत्नी और वो दो से दिल वाले चोर तो डेली, आदित्य रिखारी, श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज, जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive, Jio Bindaas.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: है मुश्किल यार। एक नंबर फिल्म है यार, लेकिन मौसम एक नंबर नहीं है यार। मौसम का क्या हाल है? मेरी दीदी ना आजकल दुबई में है, सो मैं उनसे पूछ रही थी मौसम क्या था। भाई बड़ी गर्मी है, मुझे मेरा कनाडा वापस जाना है। आई एम लाइक क्या कर सकते हैं, अभी 40 डिग्री सेल्सियस अपने कदर का टेम्परेचर है, फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर 43 है एंड मिनिमम 34 है। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी 13% है और ऐसा वीकेंड के लिए बोला जा रहा है टेम्परेचर जो है वो 45 तक जाने वाला है, लेकिन जब 45 पे जाएगा तो फील्स लाइक कितना होगा वो पता नहीं है यार। सुन दे रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, प्रेयर का टाइम होने वाला है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
4: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर, जियो बिंदास।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. Experience more with Ooredoo.
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
5: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
4: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
5: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
4: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बहुत और सब कुछ अच्छा है यार। अरे आप लोगों की बात कर रही हूँ यार, जे बज के 49 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, मैं क्या चीज जाने के दादी की हाल चाल करवा दे चम्मा चम्मा। छम्मा चलती रहनी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी जो चलती फिरती रहनी चाहिए, बाहर थोड़ा सा निकलना चाहिए, काम वाम करते रहना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक रिसेंट स्टडी ये बोल रही है कि जो लोग रिमोट वर्क करते हैं ना, मतलब घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब ऐसे टाइम पे वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, उनका ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो हो गया है। वो घर पे 2-4 दिन के लिए ठीक है, वो बढ़िया है, मेरे को बढ़िया लगता है, मेरे को मेरा मी टाइम बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वीकेंड हो गया ना, उसके बाद मैं हो जाता है कि मेरे को ऑफिस आना, भाई मेरे को ऑफिस आना है, मेरे को काम करना है, मैं वेले नहीं बैठ सकती हूँ, है ना। फिर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, भाई स्टडी का ये कहना है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि अकेला बंदा पगला जाता है यार, चला हो जाता है इंसान। सो या अगर आपको लग रहा है कि आपका रिमोट वर्क है और आप घर पे ही काम करते हो, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को एक कॉफी डेट पे जरूर लेके जाइए बाहर जाके। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं बाहर जाके बैठ के लोगों को बस देखती रहती हूँ, मुझे आते जाते सूख में कभी देखा, मैं पीपल वॉचिंग करती हूँ यार, मेरे को बड़ा सही लगता है। मतलब या ट्राई करके देखिएगा, बट अकेले अकेले अकेले अकेले एक हद तक अच्छा है, चाहे आपको किसी से नहीं मिलना है, आपको नो पीपलिंग जोन में हो, आप कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ एक चेयर पे कॉफी लेके अपना लैपटॉप लेके बैठो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
3: तो

0: सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

देखो दोस्त, एक बात तो

सुनियो कि दादी की हाल चाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। अपने ऊपर रंग चढ़ा है वीकेंड का, तो बहुत सारी बधाइयां हमें चाहिए थे, बहुत सारे पटाखे, क्योंकि वीकेंड एक सेलिब्रेशन है यार। अपने आप में मेरे साथ रहोगे तो ये सारी चीजें सेलिब्रेट करना सीख जाओगे, क्योंकि मुझे छोटी छोटी खुशियां जो है ना वो बहुत खुशी देती है। बड़ी खुशियां जो आई डोंट माइंड, बट छोटी खुशियों को भी हमेशा मैं अपने साथ में रखती हूँ। अभी फिलहाल एक चीज हमेशा अपने साथ में रखिए, वो है आपका दिमाग, जिसका यूज आपको करना है, करना ही है। सो क्या हुआ, कल मैं और तनीषा थे, तो तनीषा ने देखा कोई तो सिंगर था, शी इज लाइक ओ ये कतर में आ रहा है, ये दिख दिख दिख दिख। आई एम लाइक ये कौन सा देखा, तो कोई और ही वेबसाइट थी, कोई और ही पेज था इंस्टाग्राम का। आई एम लाइक यार ये वाले पेज पे मैंने कोई ये, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाकी पेजेस पे जिन पे वो कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो वहाँ पे जाके चेक करती हूँ। कहीं पे भी उस जो सिंगर का नाम नहीं था, कि कहीं से नहीं आ रहा। फिर हमने गूगल किया, वो बंदे का यहाँ पे टूर ही नहीं है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया और हमने वहाँ पे जाके टिकट्स बुक नहीं की। तो बहुत सारे फेक कॉन्सर्ट जो हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स और इंस्टाग्राम के पेजेस जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सो वेरीफाई करना दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर देखो सवारी यहाँ पे अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। सामान है आपका कार्ड जो कि आप लगा दोगे, स्कैम हो रहे हैं दोस्त। मतलब इस तरह की जो वेबसाइट्स रहती हैं या इंस्टाग्राम के ऐसे चुन्नू मुन्नू से पेजेस रहते हैं, इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई कतर में कॉन्सर्ट हो रहा था तो हर जगह पर न्यूज़ आ जाती है। सो यार

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल बहार, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुकवाकिफ अलखोर।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3।
8: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
11: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मेरी फोटो हमेशा गंदी खींची जाती है और मैं उनमें से हूँ एक्चुअली, जिसकी जो मैं सबकी फोटो खींचती हूँ यार। सो मेरे साथ वही गंदा कांड होता है कि मेरे दोस्त लोग इतनी गंदी फोटो खींचते हैं और भाई उनको शर्म भी नहीं आती, इतनी गंदी फोटो खींचते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ठहर जाते हैं, थोड़ी देर रुक के इस बात को सुनते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बहुत प्यारी चीज पड़ी थी यार मैंने, कहते हैं कि वो जो अकेले रहने पे तुला है, वो जो अकेले रहने पे तुला है उसने लोगों के साथ रहकर भी तो देखा होगा ना। ओए होए होए, मैं क्या टच कर गई यार। एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ ना थोड़ी सी अलग हो चुकी है और लोग जो है ना वो स्पेस चाहते हैं, बाउंड्रीज हैं और मी टाइम जो है वो चाहिए। मी टाइम वाली तो मैं भी बंदी हूँ, बट या ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा एक टाइम रहता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो ऐसे जोन में रहते हैं कि लोगों से ज़्यादा उनको बात ना करनी पड़े। मैं भी अपने ना 2-3-4 लोगों के बीच में ही कंफर्टेबल रहती हूँ, और मेरे को जब मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है, मेरे अंदर से चिल्लाती हूँ। मैं जिस जगह पे पहुँचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि निकलूंगी कैसे, मैं कब निकलने वाली हूँ, और मेरा माइंड पहले ही निकल चुका होता है, मेरा माइंड प्लान कर चुका होता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं चाय लेने वाली हूँ, मैं ये खाने वाली हूँ, वो करने वाली, अकेले कौन सी सीरीज देखने वाली। सो या सो सबका अपना अपना एक सीन होता है एक टाइम पे। अब मैं, मेरे को बड़ा पसंद था पहले कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हर किसी को दोस्त बोल देती थी, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। सो या जब आपकी एडल्टिंग होती है, जब आप बड़े होते हो ना, आपको पता लगता है हर कोई आपका दोस्त नहीं होता और हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, और हर किसी के साथ आपको वाइब मैच करवाना जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ में जो थोड़े लोग हैं, अगर उनके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, दैट्स ओके, दैट्स इनफ। सो या
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: presents CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

नई चीजें होनी चाहिए लाइफ, आगे बढ़ानी चाहिए आपको। ये जो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स है ये भी आपको यही कह रहा है। बताती हूँ, वो कह रहे हैं कि आपने ये जो पुराने गोल्ड के डिजाइन खरीदे थे ना, ये पुराने हो चुके हैं, अब इनको नए डेजलिंग डिजाइन के साथ चेंज कर लो, बस सिर्फ मेकिंग चार्जेस आपको पे करने हैं। यस, आपको यही बोल रहे हैं। एंड उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप अप टू 15% गोल्ड प्राइजेस पर कतर में सेव भी कर सकते हो, तो आपके पास मौका भी है। और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के पास बढ़िया वाले डिजाइन भी हैं जो कि आप अपने पुराने गोल्ड के साथ एक्सचेंज करवा सकते हो, सिर्फ मेकिंग चार्जेस देंगे। क्या बोलते हो?

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

गाना सही चल रहा होता है, बीच में वाइया वाइया कर देने, क्या करने लग जाते हैं, मेरे को समझ नहीं लगता वो क्या बोल रहे हैं यार। सॉरी मैं सुर में नहीं बता सकती। हां जी मैं जी सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल बिना देर लगाए। कि आपका नाम अभी अभी रेडियो पे बोला जाए तो आप डिजर्व करते हो डार्लिंग, बस मैं इतना डिजर्व करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना नाम बता दीजिए, सर मैं आपका नाम जरूर ले दूंगी, ठीक है। सो अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मेरी व्हाट्सएप स्क्रीन पे मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ, बस शर्त ये है नो हाई नो हेलो नो वॉइस नोट, और रूल यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिख के भेजना 3311063 पर। चलो अब मैं नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। फवाद, आरिफ रजा, रिफत, मोहम्मद यूसुफ, सहार, हारिस जी, डेजी जी, आसमा जी, अबूजर अंसारी जी, प्रकाश, आलिया जी, रिवू जी, अफसान जी, अल्फिया सरफराज, फैसल जी थैंक यू सो मच, रियाज बलोच जी थैंक यू सो मच, प्रकाश जी थैंक यू सो मच, वसीफ जी थैंक यू सो मच, अमिताभ बच्चन, यार ये इमेजिनरी नेम मत लिखो प्लीज़, हाँ दानिश जी थैंक यू सो मच, इस्लाम जी थैंक यू सो मच, पूर्णिमा जी थैंक यू सो मच, निमृति जी थैंक यू सो मच, मकसूद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, जयवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, एंड हाजिरा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाजिरा सॉरी अहमद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, किशोर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निर्मल जी थैंक यू सो मच, सूरज जी थैंक यू सो मच, अभी के लिए थैंक यू मत बोलो, मैं आपको थैंक यू बोलने का पूरा पूरा मौका दूंगी, विक्रम जी थैंक यू सो मच, अहमद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सीमा जी थैंक यू सो मच, रिजुल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहमान जी, विक्रम छेत्री जी थैंक यू सो मच, अल्फिया जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, इरफान जी आपके मैसेज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजनी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों ने अपने नाम सुन लिए अब आप थैंक यू भेजिए और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलो वेट कर रही हूँ मैं।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher.
0: Lulu Stores पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu Points के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026. Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
4: अरमान मलिक।
5: मैं number one.
3: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
7: Radio Olive, I'm number one.
8: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग।
9: जबरदस्त इवनिंग। मेरे भाई।
8: सिर्फ Radio Olive पर।
9: जबरदस्त इवनिंग।
8: Jio Bindas.
10: Zabardast evening.
11: Zabardast evening. Make your drive golden with.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: करते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया।
0: चलो एक चुटकी सॉन्ग में चुटकी भर सॉन्ग आपको सुनाती हूं और बताओ ये कौन सा सॉन्ग है। दिमाग की बत्ती जली, चलो थोड़ी सी और जला देते, एक बार वापस से सुना, ध्यान से सुनो, बताओ ये कौन से गाने की धुन है, कौन सा गाना है ये। ओके, सो जवाब देने के लिए प्लीज लिखिएगा मत, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। वॉइस नोट पे मेहनत वैसे लगती नहीं है, लिखने पे मेहनत लगती है। सो वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए और अपने नाम के साथ जवाब जरूर भेजना है। भेज दीजिए 3311063 पर, इंतजार कर रही हूँ।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
0: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हां जी सुने हो कितना दिखी हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल
1: झुमका
0: सुना दिया ऑलमोस्ट की गाना कौन सा है लेकिन एक चुटकी सॉन्ग वाला गाना आपने पहचाना कि नहीं पहचाना
2: रेडियो ऑलिव पर
0: बहुत बढ़िया एक चुटकी सॉन्ग ये था और आप लोगों के जवाब सुनते हैं
3: सिमरन हाय इवनिंग वेरी गुड सुषमा हियर द सॉन्ग यू प्लेड वाज मोटर गश्ती फ्रॉम फिल्म तमाशा
0: ओके
3: थैंक यू
0: जी
3: फेंका नया पासा फिर दे गई झांसा ऐवे मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी यू नो सॉरी सुर में गड़बड़ है बट सॉन्ग यही है
0: हाँ मुकड़ा तो फिर भी नहीं सुना है डार्लिंग लेकिन आई लव इट थैंक यू यार
4: हे सिमरन
0: हाय
4: गुड इवनिंग
0: वेरी गुड इवनिंग
4: दिनों के बाद आपको वॉइस नोट भेज रही हूँ मेरा नाम है सबीहा
0: जी
4: और ये सॉन्ग मुझे सिर्फ इसकी ट्यून अच्छे से याद है बट आई विल ट्राई मटर गश्ती खुली सड़क में ना ना ना ना ना ना ना Thank you very much. Have a nice weekend.
0: Yay!
4: Bye-bye.
0: Happy weekend, guys. बिल्कुल सही पहचाना यार गाना तो बिल्कुल सही है और मजा आ जाता है यार और जो लोग बोल रहे हैं ना सभी आपने बोला काफी दिन बाद क्यों यार मतलब हर रोज सुना करो हर रोज मैसेज भेजा करो एंजॉय करो हैप्पी वीकेंड सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर कहते रहो जियो बिंदास भूलिएगा मत आप अपनी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Dr. Onair. Dr. Onair. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi everyone. It's me, Dr. Afzal, Naseem Healthcare. People are always suspicious about when the tooth to get filled and how they can recognize themselves that the tooth needs to be filled. Yeah, if you can make out brown discoloration or black discoloration or a chalky white appearance on the surface of your teeth, just immediately consult your dentist and get the required tooth or teeth to get filled. Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
2: Dr. Onair. Dr. Onair. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आज झुमका
1: शुरुआत करते हैं। मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल उसको कैंसिल कर दीजिए, शाम के टाइम ही निकलिए, और दिन में अगर जाना है तो मॉल चले जाइए, ऐसी जगह पे जाइए जहां पर आपको आउटडोर एसी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कतर में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आउटडोर एसी आराम से मिल जाते हैं। फिर चाहे आपको जिम करनी हो, वॉक करनी हो, या शॉपिंग करनी हो, घूमना फिरना हो, बैठना हो कहीं पे बाहर, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो अपनी होती है सैटरडे शाम को 5 बजे मुलाकात। खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना किसमें से यारा लाई मस्करा।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. Whoa.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंद।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।